रात को दिन बना के बात करो, मैं कदे की चराग मद्दम है, जरा आंखें उठा के बात करो।